0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुंग समाचार को सहयात्री।

मेरे जैसा बेबी यहाँ कोई नहीं, मुझे पता है तू कल सोई नहीं, सबको पता है तुझे हो गया लव, सच्ची बता दे हो गया कब, और कहती

0: me a...
1: Extreme energy drink.
2: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

नमस्कार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम बैंड में थोप्लो सात मेगाहर्ज बाटो म बद्री प्रसाद सागकोट आज विक्रम संवत 2083 साल श्रावण शुक्ल पक्ष सन 2026 अगस्त 19 तारीख भाद्र 3 गते बुधवार सप्तमी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पय भरी

sari chaya hun raja naushkai sari daulat le paripurna hos pavana jai nai pare ka gare manda kun savale duryodhana saman karnai saman danama tagat sri balaram kai sari haos sadvata kai kamama राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजन में मनुन बढ़ाले पने कृति उज्ज्वल होस सुत सहित का